मूर्तियां दे गलों ओ हार ला के इस देवा पंडित ने ओ हार अपने गल विच पा लिया ते मंदिर दा बुआ बंद करन लगा ते दूर सारे राजे दा रथ आंदा दिस पिया। राजे नू देखिया ते देवा पंडित घबरा गया कि राजा आ गया, हार मैं अपने गल पा लिया।

देवा पंडित बड़ा बेफिक्र है कि कल दी गल आई गई हो गई, पर राजा पूछता है

पंडित जिहड़ा है उदास हो गया कि हुण की होवेगा। फिर सोचिया कि इक्को ही रस्ता रह गया कि हुण मैं अरदास करां। ओ परमेश्वर अरदास से उठ के हो सकता है।

राजा आ पहुंचे है। देवा पंडित दी अखां बंद ने, उन्हों कोई पता नहीं राजे ने आना है। उदा मन जुड़ चुका है। राजा आया, राजे ने मंदिर दा टोकिया होया, बुआ खोलिया, ते की देखिया, पत्थर दी मूर्ति ते सफेद लम्मा दाड़ा आया होया। देवा पंडित वाल देखिया, ओ हाथ जोड़ के बैठा है, अखां बंद ने। राजे ने नमस्कार की थी, देवा पंडित नु हलाया, देवा पंडित ने अखां खोलियां, सीधा ध्यान मूर्ति

देवा पंडित निहाल हो गया, वो तो बलिहार जा रहे है, पर जेड़ा राजा सी उदे मन विच शंका पैदा हो गया। राजा कहन लगा, अज तक सुनिया नहीं के पत्थर दी मूर्ति नू दाढ़ी आई हो, ए कदी हो ही नहीं सकता। इस पंडित ने पत्थर दी मूर्ति

उस पत्थर दी मूर्ति ने नक चढ़ाई मानो के दुख पिया लगता है। पर राजे नु हाले भी भरोसा नहीं आया के पत्थर दी मूर्ति ने नक चढ़ाई। वो जेड़े वाल सन राजे ने

आवाज आई, राजन तेरी इच्छा सी कि मैं भगवान दे दर्शन सफेद दाढ़ी विच करा। तेनू दर्शन हो गए पर तू अंत लेना चाहिया, तू भरोसा नहीं कीता ते जेड़ा उदा अंत लेना चाहता है वो आप खत्म हो जाता है। गुरु साहब जी कहते अनंत को चाहन जो गए से आए अंत को आए। जिन्हें भी परमेश्वर का अंत लेना चाहिया वो आप ही खत्म हो गया। राजन आज तू बाद तेरा राज भी खत्म हो जाएगा। तो भगत नामदेव जी कह रहे ने कि देवा पंडित ने भावे अपराध किया सी पर उन्हें मन करके अरदास की थी, ते उस देवा पंडित नु भी उस

रोज सवेरे गनका उठ के असोता कहंदे ने जगा के तोते नु जगा के कहना गंगा राम को राम राम। रोजाना ही हुण पाप छड़ दिते ते तोते नु राम राम जपान लग पई ते एदी लिव तोते नु जपांदिया जपांदिया अपनी भी लग जांदी।

चंदन दा तिलक लगाने वास्ते कन सुनो ए जा रही है। कंस जिहड़ा सी कृष्ण भगवान दा मामा सी, पर जिथे कृष्ण भगवान अवतार सन उथे कंस बड़ा पापी और दुराचारी सी। ए कुबजा कंस नू टिक्का लगाने वास्ते जा रही है, उधरों कृष्ण भगवान एदे सामने आ निकले। कृष्ण भगवान दा रूप देख के, उन्हां दा प्रताप देख के कुबजा मालन कृष्ण भगवान दे सामने खलो गई। इन्ना मन विच प्यार ते श्रद्धा, ओ जिहड़ा तिलक कंस नू लाया करदी सी ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਬਜਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कृष्ण भगवान ने कुबजा का एक हाथ फड़िया, अपना पैर कुबजा दे पैर ते रखिया, ते हाथ फड़ के जोर दी तानू हुजका जिहा मारिया, ते कुबजा जिहड़ी मालन सी उहदा कुब कढ दिता, उहदा लक सिद्धा हो गया। ए इलाज ना कोई डाक्टर कर सकदा है, ना कोई हकीम, पर उस भगवान ने एक हुजके दे नाल कुबजा मालन दा जिहड़ा लक सी ओ एकदम सीधा कर दिता। क्यों? के परमेश्वर जी नू भेजदा है, ओ दुख सुख ओहो ही दिंदा है, ओ जिन्नू चाहवे ओनू दुख दिंदा है, जिन्नू चाहवे ओनू सुख दिंदा है, ए ओदी मर्जी। कुबजा मालन दा उधार हो गया, अजामल पापी सारी उम्र पाप करता रहा, एक वारी नारायण किया ते एदा भी उदार परमेश्वर ने।

क्योंकि साड़ा आखरी समा आ गया। असी हुण यह दुनिया छड़ के उस परमेश्वर दे कोल जाना है। भगत नामदेव जी कह रहे ने कि उस बद्धक शिकारी ने भावें कृष्ण भगवान दे चरणां विच तीर मारे आ, पर कृष्ण भगवान ने उन्हों फिर भी गल दे नाल लाया ते उह मुक्त पए ते उस बद्धक शिकारी नूं भगवान ने तीर खा के भी मुक्ति दे दित्ती। ते भगत जी कहिंदे ने हौ बल बल जिन राम कहे, मैं उन्हां तों बलिहार जाना जिहड़ा इंसान मन करके

दासी सुत बिदर पांडवां दा मतरेया भरा सी। पिता दे पांडवां दा जिहड़ा पिता सी ओही बिदर दा भी पिता सी, पर बिदर दी जिहड़ी मां सी ओ गोली सी नौकराणी। के भगवान ने दासी सुत दासी दे पुत्र बिदर नू भी तारिया, सुदामे नू भी तारिया, ते उग्र सैन जिहड़ा सी उग्र सैन को राज दिए। उग्र सैन कंस दा पिता, कृष्ण भगवान दा नाना सी। कंस ने अपने पिता उग्र सैन नू कैद कीता होया सी ते आप राजगद्दी ते बैठा जुलम कर रहा सी। कृष्ण भगवान ने कंस नू मार के अपने नाने उग्र सैन नू फिर

ना बीजे बार बैठे हैं सुन, ना पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पविए नंग, ना पीजे पेड़ मरे पिड़ सूर, कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच, रब नहीं पीजदा। ना पीजे केते होवे तूड़, कोई अपने आप नू तूड़ भी बना ले, पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन, लेखा लिखिए मन के पाए, जे तेरा मन ही नहीं हुआ

परम सत्कार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी सात संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईशर सिंह नानक सर वाले महापुरश आप जी उन्हां दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन। ए बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो। जेड़े सुन लैणगे ओह भी सात संगत पछताउणगे, जेड़े ना सुणगे ओह भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तो बनिया चीजा भी लोहा हुंदिया ने। जिन्हें लकड़ तो बनिया चीजा ते लकड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिन्हें पानी ते पानी तो बनिया लहरां विच फर्क नहीं हुंदा। प्रेमियो समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी, छल फिर समुंदर दे विच ही खत्म हो जांदी है। जिन्हें समुंदर ते समुंदर दीयां लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। इवें बाबा ईशर सिंह ते अकाल पुरख च कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। प्रेमियों अज जिन्हां संतां दी बरसी मना रहे हो, याद मना रहे, बरसी तां असीं शरीर करके मनाउने आ भई संत चले गए। अग्ञानी पुरशां नूं हुंदा भी संत चले गए, ज्ञान नूं इन्ने साल हो गए। अज दास अखबार च पढ़ रहा सी 25 साल हो गए, शायद 25वीं बरसी है। कौन कहिंदा महापुरश चले गए? महापुरश तां हाजर नाजर बैठे ने। बुलिया रब तैथों वख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। हुण अन्ने नूं किहड़ा आखे भी, जे अन्ने नूं कहीए भी दुनिया बड़ी सोहणी है, अन्ना जे ना मन्ने, अन्ना कहे दुनिया तां सोहणी है ही नहीं, उत्थे की दलील देईए। दुनिया ते फुल ते बड़े ने, पर गुलाब दे नाल दी सुगंधी नहीं मिलदी। संसार ते महापुरश ते बड़े ने, पर बाबा आनंद सिंह वर्गे बाबा, इस तों अगे चलो बाबा महाहरनाम सिंह पुच्चो मंडी वाले महापुरश, उन्हां वर्गे बाबा ईशर सिंह जी नानसर वाले महापुरश, इन्हां वर्गे महापुरशां दा मिलना साध संगत जी बड़ी मुश्किल है। दुनिया ते लकड़ां ते बथेरियां ने, पर बामण चंदन दी लकड़ी दा मिलना मुश्किल है। संसार ते पानी ते बड़े ने, पर गंगा जल दी महानता अपनी वखरी है। सारे पड़ो ना कोई होया ते ना किसे होना, मेरे प्रीतम वर्गा कोई रसना रह ना जाए। तेरे ज्ञानी जग

चरनी मथा गुर चरनी मथा उस्त मन में करनकार कर्मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रस

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: सब मिलके करो कीर्तन।

चहन अर बरन जाल अर पात न हिंजे रूप रंग अर रेख भेद को कह न सकत कह अचल मूर्त अर भव प्रकाश अर

0: कलयुग
1: में कीर्तन परदाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना।
0: कलयुग में कीर्तन परदाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दर्शन।

बहुत गरीब सी, अनपढ़ भी, गावां मझां चरांदा है। भगत धरने बारे भाई गुरदास जी ने अपनी वार विच इस तरह बयान किया है कि जदो इंसान सच्चे मनो उस परमेश्वर की भगति करता है, उहदा नाम लैंदा है, तां उह परमेश्वर किस तरह आके मिलता है, जिवें धन्ने नूं मिलिया। भाई गुरदास जी इस तरह बयान करते हैं।

हो सकता है मेरी गरीबी कटी जावे। तन्ना सी भोला अनपढ़। तन्ना कहन लगा, चंगा फिर पंडित जी, इस तरह करो, एक ठाकुर मैनू दे दे। पुजारी नु गुस्सा चढ़ गया। पुजारी कहन लगा, जाओ तन्या जाके अपना काम कर, ये कोई मखौल है? मंदिर विच मूर्ति चुक के मैं तैनू दे दे। पर जिहड़ा तन्ना है इहदे मन विच ये गल बैठ गई कि सेवा

ए पुजारी तन्ने नू कह के कि तन्या मैं तेनू ठाकुर देना मंदिर दे पिछवाड़े चला गया। बार डिगा होया एक गोल मोल पत्थर चुकया कपड़े विच लपेट के

पुजारी ने अपना पिछा छुड़ा लिया। होने ते फर्क है, ओ पुजारी पत्थर दिया मूर्तियां दी पूजा करदा है, पर पत्थर समझदा है। ते तरने नूं उस पुजारी ने कोई मूर्ति नहीं दिती, बाहरों एक पत्थर चुक के दिता, पर तन्ने दी भावना उस तन्ने ने उस पत्थर नूं ठाकुर समझ के ते अपने सिर ते चुक लिया। ते मन विच की

जद तक तू रोटी नहीं खावी ठाकुर भुखा मर जांगा ते मरांगा भी तेरे सिर चढ़ के बदनामी भी होवेगी ता तेरी होवेगी लोग कहणगे के भगत भुखा

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब किन्ने रब देखे उन्नू पुछो भाई तू इस लायक है कि तू रब नू देख सके जे देखना है उस नू ते भगत धन्ने वर्गा अपना मन बना लो। कदी क्या किसे ने ऐ ठाकुर ऐ सतगुरु ऐ रोटी पई जद तक तू नहीं खावेगा असी नहीं खाएंगे। जद कदी क्या नहीं उन्नू मिलन दी कोशिश नहीं कीती ते सानू ओ रब ओ सतगुरु किस तरह मिलेगा। ऐ तन्ना बैठा है कहन लगा ठाकुर फैसला कर लिया जे तू नहीं खानी ते मैं भी रोटी नहीं खानी। जद मन विच ए धार लिया ता उस परमेश्वर नू आना पिया परतख होके तन्ने दे सामने बैठ गया।